0: थ्री ए ईस्ट और फोर ए वेस्ट समेत हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।
1: आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिलेवार प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानी और अनातोलिया की इब्तदाई तहजीब पेश की जाएंगी।
0: और हमारा प्रोग्राम हसब मामूल एक घंटे तक जारी रहेगा। आज आपकी मेज़बान है मिसबा शाहीन
1: सगीर अहमद
0: और स्टूडियो में हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रही हैं उसके खुराए।

0: Gayet samimi program kağıdımı kas kas kabrım kahkula sasımat formalice.
1: तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन ने फ्रात थाल ऑपरेशन की सालगिरह के मौका पर खसूसी पैगाम जारी किए हैं।
0: अमरीकी वजीर खजाना माफ कीजिएगा अमरीकी वजीर खजाना ने कहा है कि वाशिंगटन ईरान के खिलाफ फौजी इकदाम के बाद एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है।
1: इसराइली फौजें जुनूबी शाम में दोबारा दाखिल हो गई हैं।
0: इसराइली फौज ने जुनूबी शाम के सूबे कुनैतरा में दोबारा दरअंदाजी की है।
1: इसराइली ज़राए अब्लाग में एक रिपोर्ट नशर करदा तस्वीर में मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाल में वाक़ शहर तुलकरम के नूर शम्स पनाह गज़ीन कैंप की एक मस्जिद के मीनार पर इसराइली परचम लहराता हुआ देखा गया है।
0: अरब खबरें तफसील के साथ।
1: तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन ने फरात थाल ऑपरेशन की सालगिरह के मौका पर एक खसूसी पैगाम जारी किया है। सदर एर्दोगन ने अपने पैगाम में कहा है कि हमने अपनी फौज की ताकत का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया है और दोस्त दुश्मन सब पर वासे कर दिया है कि हम अपने खित्ते में दहशतगर्दी, तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फरात थाल ऑपरेशन की सालाना याद के मौका पर अपने अजीज शहदा की मगफरत के लिए दुआगो हूँ और दिलेर गाजियों का शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक बयान में ऐलान किया है कि वाशिंगटन ईरान के खिलाफ फौजी इकदाम के बाद एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है और आखिरी खेल शुरू हो गया है। बेसेंट ने दावा किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों, पैदावारी तनसीबात और जौहरी प्रोग्राम को काफ़ी हद तक बेअसर कर दिया है। वजीर खजाना ने यह बताते हुए कि सुबह 9 के साथ ही किसी दुश्मन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मालियाती ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, उन्होंने इस अमल को इक्तसादी दिन भी करार दिया। बेसेंट ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि ईरानी इंतजामिया भत्ताखोरी को सिक्योरिटी की जमानत समझती है और यह गुमान करती है कि अमरीकी पाबंदियाँ काबिल मुज़ाकरात हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप इंतजामिया के साथ अब यह सोच ख़त्म हो चुकी है। वाशिंगटन के सब्र का इम्तहान ना लेने की तनबीह करते हुए वजीर खजाना ने वाज़े किया कि उनका बुनियादी मकसद तहरान को मुकम्मल तौर पर तन्हा करने तक हुकूमत को सहारा देने वाली तमाम इक्तसादी शहरगों को काटना होगा।
1: इसराइली फौजें जनूबी शाम में दाखिल हो गई हैं। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी शाम के सूबा कनेत्रा पर एक और भारी हमला करके एक चरवाहे को हिरासत में ले लिया है। शामी ज़राए ब्लॉग के मुताबिक इसराइली फौजियों ने कनेत्रा के जनूबी कस्बे अल रफीद के मगरिब में पेशकदमी की और इलाके में मौजूद एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। इलाके में घुसी इसराइली फौज तलाशियां ले रही है, गिरफ्तारियां कर रही है और बास मुकाम पर फौजी चौकियां बना रही है। इसराइली फौजियों ने जुमा को अल रफीद के मगरिब में भी पेशकदमी की। वाजिर है कि इसराइली फौज हालिया महीनों में मुतअद्दिद दफा जनूबी शाम में सरहदी लाइन पर हमले कर चुकी है।
0: शामी और इसराइली आला सतह वफूद उर्दन में अमरीकी सालसी के तहत हालिया इसराइली हमलों के बाद कशीदगी कम करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। शामी वक्त की क्यादत वजीर खारजा असद अल शिबानी ने की और उनके साथ खुफिया इदारों के सरबराहान भी मौजूद रहे। वक्त ने इसराइली हमलों, गिरफ्तारियों और दरअंदाजियों को रोकने के लिए अमली मैकेनिज्म कायम करने पर तवज्जो मरकूज की और एक सिक्योरिटी माहदे की तजदीद पर बातचीत भी की। बातचीत के दौरान दमिश्क ने जोर दिया है कि शाम एक खुद मुख्तार रियासत है और उसे अपनी कौमी फौज को बिना किसी पाबंद तरीक़ाकार के अज़र-ए-नाव मुनज़्ज़म करने और शराकत दारियों के तायुन का पूरा हक हासिल है। शाम ने इस बात का यादा किया है कि मकबूजा गोलान शामी इलाका है और फौरी तरजीह इसराइली अफवाज का 8 दिसंबर 2024 से कबल की सरहदी लाइनों तक वापस लौटना और 1974 के अलहदगी माहदे की मुकम्मल बहाली है।
1: इसराइल के मुकामी ज़राए ब्लॉग की रिपोर्टों में एक तस्वीर नशर की गई है जिसमें मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाल में वाक़ शहर तुलकरम के नूर शम्स पनाह गज़ीन कैंप की एक मस्जिद के मीनार पर इसराइली परचम लहराता हुआ देखा जा सकता है। ये बात वाज़ेह रही कि इसराइली फौज मकबूजा मगरबी किनारे में सड़कों के किनारों और शहरों के दाखिली रास्तों समेत हर उस जगह पर कि जहां वो जाती है इसराइली परचम लटकाने के हवाले से पहचानी जाती है। इसराइली फौज ने जनवरी 2025 में मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाल में वाक़ नूर शम्स समेत दीगर पनाह गज़ीन कैंपों पर शदीद हमले शुरू किए थे। इन हमलों के नतीजे में कैंपों में रहने वाले हजारों फलस्तीनी बेघर हो गए थे जबकि दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई थी।
0: इसराइली फौज ने 3 साल जंग के दौरान गुज़िश्ता 30 सालों में इस्तेमाल किए गए गोला बारूद के बराबर गोला बारूद इस्तेमाल किया है। इसराइली अखबार मुआरिफ की खबर के मुताबिक इसराइली फौज ने गज़ा में 3 साल से कम अरसे तक जारी रहने वाली जंग में इतना गोला बारूद इस्तेमाल किया है जो उसने गुज़िश्ता 30 बरसों में इस्तेमाल किया था। यह सूरत हाल फौजी एहलकारों, साजो सामान और माली वसाइल पर बढ़ते हुए दबाव की निशानदेही करती है। मारफ के मुताबिक इसी अरसे के दौरान इसराइली फिजाइया की सरगर्मियां भी मामूल के हालात में तकरीबन 9 साल की कार्रवाइयों के बराबर रही हैं। ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں میں استعمال کیے گئے انجنوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہے۔ اخبار نے کہا ہے کہ فوجی ساز و سامان کو تبدیل یا مرمت کیا جا سکتا ہے، لیکن فوجی اہلکاروں پر پڑنے والے بوجھ کو کم کرنا یا اس کے اثرات کو ختم کرنا کہیں زیادہ مشکل ہے۔ خبر کے مطابق دیگر اسرائیلی سیکیورٹی ادارے خارج صرف فوجی جانی نقصان 1138 فوجی ہیں، اس کے علاوہ 11730 افراد جسمانی یا نفسیاتی طور پر متاثر ہوئے ہیں اور ابھی مزید ہزاروں افراد کے نفسیاتی صدمے کا شکار ہونے کا امکان ہے۔ مستقل فوجی اہلکاروں میں بھی دباؤ کی علامات سامنے آ رہی ہیں، جن فوجی اہلکاروں کو کمانڈ کی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں ان کی بڑی تعداد کم دباؤ والی پچھلی صفوں میں رہنے کو ترجیح دے رہے یا مکمل طور پر فوج چھوڑ رہے ہیں۔ دراصل اسرائیلی فوج یومیہ اوسطاً 53,000 ریزرو فوجیوں کو فعال ڈیوٹی پر بھی بلا رہی ہے۔
1: تھائی لینڈ حکام کے مطابق اختتام ہفتہ مشکوک باغیوں نے تھائی لینڈ کے جنوبی 4 صوبوں میں 70 سے زائد مقامات پر حکومتی عمارتوں، دکانوں، گاڑیوں اور بجلی کے کھمبوں کو آگ لگا دی، جس سے کم از کم 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملے کسی منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے ہیں۔ 2004 سے جب حالیہ دور کے بارسان رولوسی نیشنل BRN کی قیادت میں طویل المدتی بغاوتی تحریک بھڑکی، 7,800 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تھائی حکام نے کہا ہے کہ 4 صوبوں میں کم از کم 78 واقعات درج ہوئے، نارتھیا واٹ میں 40، یالا میں 21، پٹانی میں 15 اور سونگخلا میں 2۔ کسی گروپ نے ان واقعات کی ذمہ داری تاحال قبول نہیں کی۔ زیادہ تر حملے ہفتے کی شام کو پٹانی، یالا، نارتھیا واٹ اور سونگخلا کے بعض حصوں میں ہوئے، جبکہ اتوار کو بھی کچھ واقعات کی رپورٹ ہوئے ہیں۔

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: रूसी सदर पुतिन ने तस्लीम किया है कि रूस में ईंधन की किल्लत जारी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की जानिब से रूस के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों के बाद मुल्क में ईंधन के मसाइल अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुए हैं। रूसी नशरियाती इदारे VGTRK से गुफ्तगू करते हुए पुतिन ने कहा है कि इन हमलों के बाद वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्तिन तवानाई के शुबे में पैदा होने वाले मसाइल से निमट रहे हैं। पुतिन ने कहा कि गुज़िश्ते रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात और इस मामले पर बातचीत का जिक्र किया और कहा कि हाँ, अभी तक तमाम मसाइल हल नहीं हुए लेकिन उन्हें हल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इन मामलों को अपनी निगरानी में रखे हुए हैं और एक खसूसी कमीशन भी कायम किया गया है।
2: अमेरिका में 75 ममालिक के शहरियों पर लगाई गई इमिग्रेंट वीजे पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। अमेरिका वजारत खारजा ने जनवरी में ब्राज़ील, कोलंबिया, मिस्र, हेटी, सोमालिया और रूस समेत तकरीबन 40 ममालिक के शहरियों को इमिग्रेंट वीजे जारी करने को मुअत्तल कर दिया था। इंतजामिया ने इस इकदाम का इतलाक किस वजह से किया कि इस तरीके से ऐसे अफराद के दाखिले को रोका जा सकेगा जो मुमकिन तौर पर अवामी इमदाद पर इन्हसार करें। कवानीन के मुताबिक किसी इमिग्रेंट के वीज़े की दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद करने के लिए कि वो अवामी बोझ बन जाएगा, कौंसल खाने के अहलकार को फ़र्द की माली हालत, उम्र, सेहत, सलाहियतें और ख़ानदानी सूरत हाल को अलहदा अलहदा जाँचना ज़रूरी है। जज वारजास ने कहा है कि कौंसल खाने के अहलकारों को ये हिदायत दी गई थी कि वो खुद कवील सतह के अफराद के वीज़े भी महज उनके वतन पैदाइश की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए जाएँ।
1: और यूरोपीय खवातीन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में तुर्की ने स्लोवेनिया को 1-1 में 3 सेट से शिकस्त दे दी है। इस्तांबुल में होने वाली CEV यूरोपीय खवातीन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप ए में दिफाई यूरोपीय चैंपियन तुर्की ने स्लोवेनिया को 1-1 में 3 सेट से शिकस्त देकर दूसरी कामयाबी हासिल की। सिन्हा दारदम स्पोर्ट्स हॉल में खेले गए मैच में तकरीबन तुर्किया ने 21-25, 25-22, 17-25 और 16-25 के स्कोर के साथ सेट्स जीत लिए। मेलिसा वर्गास 19 पॉइंट के साथ तुर्की की टॉप स्कोरर रहीं। इल्कन आयदिन ने 13 पॉइंट्स और जहरा गुनेश ने 12 पॉइंट्स हासिल किए। तुर्की ने पहला सेट 21-25 से जीता, दूसरा 22-25 से हारा

तीसरा सेट 17 के मुकाबले में 25 से जीता और चौथा सेट 16 के मुकाबले में 25 से जीत कर मैच एक के मुकाबले में 3 सेट से जीत लिया। बात रह गई कौमी टीम ने अपना पहला मैच लाटविया के खिलाफ 0 के मुकाबले में 3 सेट से जीता था। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

यकीनन एम रिशाद आयसू का नाम भी शामिल है। दारुशफ़ाका से फारुगुल तहसील आयसू ने इस कदीम वक्फ से हासिल करदा नज़्म व ज़ब्त और सकाफ़ती गहराई को अपने मुनफरिद धुनों और तख्लीकात के ज़रिए मौसीकी की दुनिया में मुंतकिल किया। यहाँ एक वजाहत ज़रूरी है, सईद फाइक अबासियांक दारुशफ़ाका के फारुगुल तहसील नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी वालदा के साथ मिलकर अपनी पूरी जायदाद इस इदारे के नाम कर दी और यूँ अगरचे वो इसके तालिब इल्म नहीं रहे, लेकिन रूहानी तौर पर दाशका वालों में इनका मुकाम सबसे बुलंद हो गया। आज दारुशफ़ाका के अजायब घर में महफूज इनकी वसीयत इस बात का सबूत है कि इस इदारे से फारुगुल तहसील न होने वाले अफराद ने भी इस आशियाने को किस तरह अपने बाप के घर की तरह समझा। जब हम जदीद दौर में दाखिल होते हैं तो दाशका आज भी कारोबारी दुनिया से लेकर इल्मी और तहकीकी मैदान तक जिंदगी के हर शोबे में खिदमत में मसरूफ नजर आता है। साबिक आला सरकारी ओहदेदार और वजीर आजम के दफ्तर में खिदमत अंजाम देने वाले नजदत सेचकिन ओस जैसी रियासती शख्सियात से लेकर आज आलमी कंपनियों की क्यादत करने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान तक हजारों दाशका वाले इस इदारे के निसाब में मौजूद इल्म की ताजगी और असरी तकाजों से हमाहंगी की जिंदा मिसालें हैं। दारुशफ़ाका ने बच्चों को इनके बाप से महरूम होने का एहसास बुलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस कमी को माशरे के लिए एक अजीम जिम्मेदारी और कामयाबी की बेपनाह जस्तजू में तब्दील कर दिया। यहाँ से फारुगुल तहसील तलबा के रजिस्टर में दर्ज हर नाम इस बात का सबूत है कि नाकामी की एक दास्तान किस तरह कामयाबी की एक लाजवाब दास्तान में तब्दील हो सकती है। दारुशफ़ाका को अपने दौर के दूसरे स्कूलों से मुमताज़ करने वाली सबसे नुमाया खसूसियत हमेशा इसका ऐसा निसाबी तसव्वुर रहा है जो मुस्तकबिल के इल्म पर तवज्जो मरकूज करता था। इदारे के इब्तदाई बरसों में उस्मानी सल्तनत की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी यानी टेलीग्राफी की तालीम दी जाती थी, ये महज इत्तफाक नहीं था। इसका मकसद सिर्फ यतीम बच्चों को तालीम देना नहीं, बल्कि इन्हें ऐसी महारतों से आरास्ता करना था कि वो रियासत के अहम तरीन और तस्वीराती शोबों में खिदमात सर अंजाम दे सके। फ्रांसीसी जुबान की तालीम पर खसूसी तवज्जो और साइंसी उलूम में गैर मामूली सख्ती और बारीक बीनी उस जमाने के लिहाज से एक इनकलाबी कदम था। आज इल्म की ताजगी की यही मीरास स्कूल के मिजाज और बुनियादी साख्त में जिंदा है। 1955 में अंग्रेजी जुबान में तालीम शुरू करके दाशका ने अपने दरवाजे आलमी दुनिया के लिए खोल दिए। आज ये इदारा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियासी पर मरकूज एक जदीद तालीमी मरकज के तौर पर काम कर रहा है। मसनू जहानत की लेबॉर्ट्रियों, रोबोटिक्स और कोडिंग की क्लासों और कारोबारी और इख्तराई तरबियती वर्कशॉपों के जरिए दाशका के तालिब इलम सिर्फ तुर्की ही नहीं दुनिया के किसी भी हिस्से में मुकाबला करने के लिए ज़रूरी इल्मी और फ़नी सलाहियतों के साथ फारुगुल तहसील होते हैं। यह निसाब सिर्फ इम्तिहानात की तैयारी नहीं करवाता, बल्कि बच्चों को यह भी सिखाता है कि बदलती हुई दुनिया की रफ्तार के साथ कैसे हमाहंग होना है, तनकीदी अंदाज में कैसे सोचना है और इल्म में होने वाली नई पेशरफ्तों से खुद को मुसलसल कैसे बाखबर रखना है। तो फिर दुनिया में दारुशफ़ाका का मुकाम कहाँ है? ये इदारा दुनिया में शहरी मुआशरा और तालीम की बात होने पर एक मिसाली नमूने के तौर पर पेश किया जाता है। बैनुल अक्वामी प्लेटफार्मों पर इसे तालीम में मुसावी मौके फराहम करने की पायदार और कामयाब तरीन मिसालों में शुमार किया जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में यतीम बच्चों के लिए ऐसे इदारे मौजूद हैं जिनकी तवज्जो बुनियादी तौर पर रिहाइश और पनाह फराहम करने पर होती है, लेकिन दारुशफ़ाका जैसी मिसाल तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है, जहाँ ऐसे बच्चों को आला तरीन साइंसी तालीम देकर मुमताज़ और बाशऊर अफराद के तौर पर तैयार किया जाए और ये पूरा निज़ाम 160 साल से ज़ायद अरसे तक अवामी एहतियात के ज़रिए मुसलसल जारी रखा गया हो। बैनुल अक्वामी रोबोटिक्स मुकाबलों में हासिल किए गए एजाजात, नासा के मंसूबों में हिस्सा लेने वाले तलबा और हार्वर्ड से ऑक्सफोर्ड तक दुनिया की मुमताज़ जामियात में मुकम्मल वज़ाइफ पर दाखिला हासिल करने वाले फारुगुल तहसील तलबा के साथ दारुशफ़ाका एक हकीकी तुर्की ब्रांड बन चुका है। ये इदारा दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम देता है, अगर आप जहानत को शफकत और मियारी तालीम के साथ संवार दें तो आप जुग्राफिया और गुरबत की तमाम हदूद को बूर करके एक मोजज़ा तख्लीक कर सकते हैं। इस इदारे का सबसे बड़ा मोजज़ा ये साबित करना है कि अनातोलिया के किसी दूर अफ्तादा गोशे में रहने वाला एक यतीम बच्चा भी दुनिया की बेहतरीन जामियात में तालीम हासिल करने की सलाहियत और तैयारी हासिल कर सकता है।
یہ صرف ایک اسکول کی کامیابی نہیں بلکہ سماجی امن اور جمہوریت کی مضبوط ترین ضمانتوں میں سے ایک ہے۔ داچکا سے فارغ ہونے والا ہر بچہ معاشرے کے حوالے سے ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اور نیکی کا یہ سلسلہ گزشتہ 160 برس سے بغیر کسی تعطل کے جاری ہے۔ سامعین، ہم نے ایک تعلیمی شجر سایہ دار کے سائے میں ذہانت اور شفقت کی ایک عظیم داستان سنی۔ داچکا نے ہمیں یہ پیغام دیا، ایک بچے کا ہاتھ تھامنا ایک قوم کے مستقبل کی تعمیر کرنا ہے۔ ہمارے سفر کی اگلی منزل بھی 19ویں صدی کا ایک اور معجزہ ہوگی، سلطان عبدالحمید ثانی کا وہ عظیم منصوبہ رحمت جس نے دین، زبان اور نسل کی تفریق کے بغیر اپنے دروازے پوری انسانیت کے لیے کھول دیے تھے۔ اس کا نام ہے دارالاجزاء۔ رحمت کی اس وسیع اور ہمہ گیر شکل سے ملاقات کے لیے پھر ملاقات کریں گے، تب تک علم اور ضمیر کے نقشے پا پر آگے بڑھتے رہیے۔ یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے پھر ملاقات کی امید کے ساتھ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔دینے والے ہاتھ کی کہانی۔

सामिन, क्या मौत के बाद ज़िंदगी है? ये एक ऐसा सवाल है जो लोगों की अक्सरियत को परेशान करता है, और बहुत लंबे अरसे तक चाताल हुए युग में 9,000 साल पुराने मकबरे इस सवाल के कदीम तरीन जवाबात में से एक हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चाताल हुए युग में मैयत के रोज़मर्रा के सामान को कब्र में रखा जाता था ताकि वह अपनी नई दुनिया में अजीब महसूस ना करें। चट्टानी कब्रें, जिनमें से हम अनातोलिया के जुग्राफिया में बहुत सी मिसालें देखते हैं और जो उन मकबरों में अपने सामान के साथ दफन हैं, ये सब दरअसल इस यकीन की अक्कासी हैं कि मौत के बाद ज़िंदगी है। कदीम दौर के मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून ने रूह की लाफानियत का नज़रिया पेश किया, जिससे उनके बाद बहुत से मुफक्किरीन यहाँ तक के आसमानी मज़ाहिब भी मुतासर हुए। रूह जिस्म से पहले मौजूद थी और बाद में भी रहेगी। रूह की लाफानियत का तसव्वुर, जिसे तौहीद परस्त मज़ाहिब ने भी कबूल किया है, जन्नत और जहन्नुम के तसव्वुरात को यकजा करता है। यह ख्याल किया जाता है कि जो लोग ज़मीन पर अपना वक्त अच्छे दयानतदार और वफादार लोगों के तौर पर गुजारते हैं वो जन्नत में जाएंगे, और बुराई करने वाले और काफिर जहन्नुम में होंगे। सिर्फ तौहीदी मज़ाहिब में ही नहीं, बल्कि तकरीबन हर अकीदे में मौत के बाद की ज़िंदगी है और जजा और सज़ा का एक तरीक़ा हमारे सामने आता है। बहुत सी सकाफ़तों में इस ख्याल को कबूल किया जाता है कि मौत एक नई शुरुआत है। कदीम तुर्कों में खान को कदीम मिस्र में फिरौन के कीमती सामान के साथ दफन किया जाता था। द डिवाइन कॉमेडी को आलमी अदब की तारीख में सबसे अहम काम समझा जाता है। अगरचे आज के कुछ नकाद इसे साइंस फिक्शन थेरेपी के तौर पर बयान करते हैं, लेकिन यह काम हमारे बाद की ज़िंदगी के तस्वुर में बहुत बड़ा तआवुन करता है। इतालवी शायर और सियासतदान दांते ने दी डिवाइन कॉमेडी में जन्नत, जहन्नुम और पाकिजगी को बयान किया है। दांते ने जहन्नुम को नौ बाहम जुड़े हुए हल्कों के गढ़े के तौर पर बयान किया। हर दायरे में मुख्तलिफ गुनाह करने वालों को सज़ा दी जाती है, और जब आप नीचे जाते हैं तो सज़ा भारी होती जाती है। इतालवी शायर ने दी गई सज़ाओं और मसायब को बहुत मुतासिर कुल अंदाज में लिखा है। दूसरी तरफ जन्नत नौ बाहम में मरबूत आसमानी सतहों पर मुश्तमिल है। जहन्नुम के बरअक्स ये एक रोशन जगह है, जैसे जैसे आप खुदा के करीब होते जाते हैं रोशनी की शिद्दत बढ़ती जाती है। जन्नत की हर सतह पर पुरअमन रूहें हैं।